श्रोता मित्रों, आप सुन रहे गुजराती कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM पर या तो www.diversefm.com पर। गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवारे अपनी समझ रजूआत करने पूरी कोशिश करे छे रात ना 8-10 कलाके। यश जी, मने खबर छे तमे जे दुनिया रे तक आवी ओस्मान मीर नु सांभळवू हतुं, पण ते मारी पासे हाल मां नथी, पण हुं तमारा माटे गोतीने चोक्कस लई आवीशुं अने वगाड़ी पण दईश। हा अच्छा, आप सुन रहे छो गीत माला। राधा राणी ની વાત આવે ત્યારે પપ્પુભાઈ તમારી ફરમાઈશ હાજર છે।

श्रोता मित्र आप समृद्ध गुजराती कार्यक्रम गीत माला 102.8 एफएम उप या तो www.divorceFM.com उप गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवारे अपनी समझ रजूआत करने पूरी कोशिश करे चाहे रात ना 8-10 कलाके 102.8 एफएम उप लूटन टर्न्स डबल आउट एंड रिजेस लेटन बजर रेल्स परी मिल्टन किंग्स हेलो डेव मिल्टन किंग्स दी न्यू पर पेक डल ने नो तम टना टोच मा ने आ बजो आवियो तो फरी पाचा बेटवर्ड मा जे मैं ज्या राठो साहब नमस्कार अच्छा शू चाली रू है बधाए फ्लावरिंग बराबर चालू रू अच्छा आपना संदेशा बधाए खूब सुंदर हो बदल खूब खूब आभार अभी ज रीते अपने स्टीवनेज बनी गार्डन सीटी हेटफील्ड ने आजूबाजू अनेक विस्तारों में नरेन्द्र भाई रावल आप हेम के मसो ने ताजा में जासो अत्यारे हाल में मने आशा है कि तमे पण अलेक्सा पर जम कीधु अमने मैंने संदेशों आप अलेक्सा पर सांभी रहा छो बदल खूब खूब आभार अभी ज रीते दुनिया कोईपण खूणों में आप सांभता हो तो आपनु स्वागत है आप सांभ रहा छो गीतमाला

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं जो गुजराती कार्यक्रम गीतमाला 102.8 FM पर या तो www.divorcefm.com पर। गीतमाला कार्यक्रम दर गुरुवारे आपनी समक्ष रजूआत करवामां पूरी कोशिश करे छे रातना 8-10 कलाके। श्रोता मित्रों, વાત વાતમાં મેં તમને ક્લુ પણ આપી દીધું હતું કે ચાલે છે પણ પગ નથી। આપ સાંભળ્યા છો ગીતમાલા

श्रोता मित्रों, आप सम्रिया चो गुजराती कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM उपा या तो www.diversefm.com उपा। अटपट ओखाणानो बीजो एक जवाब आव्यो छे, चाले छे पण पग नथी, चाले छे पण पग नथी। जवाब आव्यो छे फोन। हा, वात साची छे तमारी, फोन चाले छे पण पग नथी, पण खोटो जवाब छे। साव सहेलो छे। आप सांभ्या छो गीत माला। मैं तमने क्लू आप्युं तुं ने, मैं एना वगर चाले ज नहीं, एमां हालना तबक्कामां। नमस्ते स्मिता जी।

श्रोता मित्रों, आप समरिया चौगुजाजी कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM ओपर या तो www.diversefm.com ओपर। एवी तो कई वस्तु छे जे चाले छे पण एने पग नथी, अने हालना तबक्कामां अने वातावरणमां खास जरूर छे। आप समरिया चो गीत माला सांभळिया, आदित्य गढवी, मीठड़ा मेहमान, यश जी।